मन हर लिन मंडल मंडाहे, कर साधु अंजलि पुनवड्डाहे, कर दंडौत पुनवड्डाहे रहाउ। सा पतगारा

स्वरूपे नमो परम तत्ंगातत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कला करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बामंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री शांत अज अल अभ अभ अबू अजू अनास।

जब आकर्ख करत हो कबहूँ तुम मैं मिलत दे तर सबहूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझो चार तुम सब ही तेरा निरालम जानत बेद प्रीत हरियालम निरंकार निरपकार निरलंब वाद नीलानद संभव ताका मुन चारत भी दा जाकू भीम न

संबत सत्रह सहसपनिजा अर्ध सह पंदीन कहिजा भाद्रव सुधी अष्टमी रा बारा ती सत्र द्रव।